0: सुप्रभात अम्बाला, आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।
1: आज है 9 अगस्त 2026 रविवार, श्रवण कृष्ण पक्ष एकादशी 2083 विक्रम संवत। आज अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:46 पर और सूर्यास्त होगा 7:10 पर। आज नागासाकी डे और क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी बनाया जा रहा है।

बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घटते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ गांव चले एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गांव अकबरपुर अंबाला पर। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी। राज्य सरकार के पीएचई विभाग के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं। आओ गांव चले। आज हम आए हैं अंबाला के एक गांव जिसका नाम है अकबरपुर। आज हम जानेंगे इस गांव के बारे में, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसकी उन्नति कैसी है, ये गाँव कितना आगे बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो हम सरपंच से बात करते हैं, क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसको हर एक चीज के बारे में जानकारी होती है। और एक सबसे अच्छी बात यह है, अब गांव भी शहरों की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब गांव के जो मुखिया है, जो सरपंच है, वो भी युवा है। तो आज हम बात करेंगे गांव अकबरपुर के सरपंच श्री राम निवास जी से, और उनसे जानेंगे गांव के बारे में, गांव की व्यवस्था के बारे में। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आओ गांव चले में। तो हम आज पहली बार आपके गांव में आएंगे, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की और कब से आप सरपंच हैं।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ अपना, और आने वाले नए साल की बधाई भी देता हूँ साथ साथ में
0: जी। आपको भी बधाई
1: सर। मेरा नाम है रामनिवास और मैं खंड सहा के अंदर पड़ता है गांव अकबरपुर का सरपंच हूँ मौजूदा
0: जी।
1: और मैं नवंबर 2022 में सरपंच चुना गया, और सरपंच बनने का मेन मकसद कोई ज्यादा वो नहीं था, ये है भी लोगों ने कहा और हम सरपंची में आ गए
0: जी।
1: दो चार दिन में तैयारी करके सरपंची में आए और लोगों की इतनी सपोर्ट मिली, भी एक तरफा बहुमत से जीते थे
0: जी।
1: और जैसे कि युवा हैं तो सरपंचों के सभी के मकसद रहते हैं भी उनका गांव साफ सुथरा रहे, सभी सुविधाएं मिले गांव वालों को, तो उन्हीं पर हमने काम किया है। और आज अगर आप देखोगे गांव में घूम के, गांव चारों तरफ से बिल्कुल स्वच्छ है, जो शौचालय वगैरह है वो भी परमानेंट बने हुए हैं, सबकी साफ सफाई है, गाँव में एक जोहड़ की व्यवस्था की हुई है, और जो गंदा पानी निकलता है नाले से वो भी नाला अच्छे से सफाई करवा देते हैं, बरसातों से पहले ही सफाई करवा देते हैं। आप देखो कई गांव में पानी आता है लेकिन अपने गांव में कभी पानी की मार नहीं हुई, हम टाइम रहते ही सफाई करवा लेते हैं अपने उसकी। सरकार से तो सभी गांव वालों को उम्मीदें होती हैं भी सरकार क्या क्या देगी क्या क्या देगी।
0: तो ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव की जो व्यवस्था है उसमें जब आप सरपंच बने तो आपके क्या लक्ष्य थे जिससे आप अपने गाँव को, अपने गाँव वासियों को एक अच्छी जिंदगी, एक स्वच्छ जिंदगी दे सके।
1: सर लक्ष्य तो पहले यही था भी मेरा गांव बिल्कुल स्वच्छ हो, गंदगी कहीं पर भी ना हो, गलियां नालियां सब स्वच्छ रहें, और मेन पानी का जो पीने का पानी है वो स्वच्छ आए हमेशा, कहीं भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना रहे, किसी के घर गंदा पानी ना जाए, और स्कूल की सुविधा, धर्मशालाओं की सुविधा, ये सारे अच्छे से साफ सुथरी रहें, लोगों के ठहरने की बैठने की व्यवस्था रहे।
0: आपके गांव में कितनी आबादी होगी और कितने अंदाजा वोटर्स होंगे?
1: वोटर 540 है और आबादी 735 के लगभग है।
0: मतलब 735 परिवार रहते हैं?
1: नहीं, 735 कुल अच्छा आबादी है गांव की, छोटा सा गांव है
0: जी,
1: और मेरे ख्याल से 140 के लगभग परिवार हैं
0: जी। हम आज आपके गांव में आए हैं और जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की
1: जी,
0: उनकी ओर से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका कार्यक्रम रेडियो पर चलता है, उस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी
1: जी सर।
0: तो आज हम आपके गांव के बारे में जब जानेंगे और जब यह कार्यक्रम प्रसारित होगा तो जो हमारे अंबाला के आसपास गांव है उन तक भी ये बात पहुंचेगी। हमारा मकसद भारत सरकार की ओर से ये जानना है कि आपके गाँव में क्या हर घर में नल से जल आता है?
1: बिल्कुल आता है सर, हर घर में नल लगे हुए हैं सर, और प्रॉपर तरीके से मेंटेन है सब, अच्छे से पानी आता है, किसी को भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है सर। और सबसे बढ़िया तो जो अपना ये ऑपरेटर साहब लगे हैं, ये टाइम टाइम पर उसमें दवाई भी डालते हैं ताकि लोगों को पानी से संबंधित कोई समस्या ना आए
0: जी।
1: मैं कहता हूँ जी ऐसी सुविधा पूरे अंबाले में कहीं नहीं होगी पानी की, जैसी हमारे गांव में है, बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था है।
0: तो पानी की जो सप्लाई है वो पूरे दिन रहती है या किसी खास समय पे, सुबह शाम रहती है?
1: टाइम से रहती है, सुबह जैसे 6 बजे से चलाते हैं 9 बजे तक रहती है
0: जी,
1: और शाम को लगभग 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक रहती है।
0: आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक समय हमारे देश में ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अपना बाल्टी या घड़ा या कोई भी बर्तन लेके कहीं दूर दूर से पानी लेके आती थी। एक पुराना जो गांव होता था उसका एक दृश्य ऐसा होता था। तो क्या आपके गांव में आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है?
1: बिल्कुल देखा है सर, हमारा बचपन इसी चीज में गुजरा है
0: जी।
1: गांव में चारों तरफ कुएं होते थे
0: जी,
1: और अभी तो एक कुआ हमने उसके क्या कहते हैं निशानी के तौर पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर जाल डाला हुआ है
0: जी।
1: और कुआ ये भी नहीं, अभी उसमें पानी सूख गया, उसमें पानी भी है सर, पर ये अभी अब कोई पीता नहीं पानी कुएं के, जितने सब नल से पानी पीते हैं।
0: हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंबाला वासियों को ये कहना चाहते हैं कि जो वो प्रथा थी वो अगर खत्म हो गई है तो इसका मतलब पानी का जो प्रवाह है, जो पानी का जो इंतजाम गांव वालों के लिए है, अब वो पूरा है।
1: देखो सर, पानी का इंतजाम तो मैं कहता हूँ मेरे गांव में तो एक्स्ट्रा है
0: जी,
1: पूरा ही नहीं एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा, इतना गांव का और पूरा पट जाता है पानी, इतना है मेरे पास, हर घर में पानी पहुंच रहा है।
0: ये अच्छी बात है कि
1: बहुत बढ़िया है पानी की,
0: ये अच्छी बात है कि आपका गांव आत्मनिर्भर है। आपके कहने से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर और किसी गांव को पानी की जरूरत है हम तो उनको भी दे सकते
1: हैं। हम देते हैं सर, फ्लेल माजरा और मिठापर तक पानी चला जाता है
0: हमारा। इसके साथ जुड़ता हुआ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये है कि स्वच्छता जो आपके गांव की है उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, चाहे वो गांव की गलियों की स्वच्छता हो या घरों की स्वच्छता हो, जो प्रबंधन है उसका वो आप कैसे करते हैं?
1: देखो सर, एक तो हमने स्वीपर रखा हुआ है, सरकार की तरफ से उपलब्ध है स्वीपर, वो स्वीपर कचरा तो सुबह इकट्ठा कर लेता है वो, उसको गाड़ी दी हुई है और साफ सफाई भी करता है। जब मान लो कचरा ज्यादा हो जाता है, जैसे आंधी तूफान आते हैं उस समय व्यवस्था कर देते हैं, दो चार लेबर लगा के साथ में उसके सफाई करवा देते हैं। मैं नहीं मानता भी कहीं गंद पड़ा होगा हमारे गाँव में,
0: उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। जब हम आपके गाँव में आए और गाँव में जब हम गलियों से चल के यहाँ आपके घर तक आए और बाकी गांव वालों से भी जब हमने बात की, हम स्कूल में भी गए
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगा, खुली डुली जगह है और साफ सुथरी जगह है
1: जी सर।
0: आप मुझे ये बताएं कि हमारा पर्सनल हाइजीन, चाहे हम पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, तो आपके गांव में जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में क्या आप लोगों को जागरूक करते हैं? जैसे हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, या जब हम खाना खाने बैठे तो उसके पहले हम अपने हाथों को साफ करें ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने से साफ सफाई रखने का इंतजाम पहले से ही रखते हैं, लेकिन फिर भी हमने कई बार छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं गांव में, और पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी कई बार, लेडीज के ऊपर भी बहुत बातें की हैं, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और मेरे ख्याल से पूरे गाँव में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा सर गंदा कोई हो।
0: चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आप एक युवा सरपंच है
1: जी सर,
0: हमारा देश हमारे गांव से बनता है
1: जी,
0: अगर गांव उन्नत है, अगर गांव की तरक्की है, तो ये मान के चल सकते हैं हमारे देश की तरक्की
1: बिल्कुल है सर।
0: आप युवा होने के नाते आपके आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आप पानी का प्रबंधन करना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है पानी की वो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, मीन्स पानी का जो प्रवाह है जमीन के नीचे वो कम होता जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ ऐसे आप प्रबंधन कर रहे हैं?
1: सर, मैंने सरकार को दो बारी रेजुलेशन डाल के दिया है
0: जी,
1: भी जब बरसात का पानी आता है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है
0: जी,
1: उसको जमीन में उतारने के लिए छोटे छोटे बोर किए जाएं ताकि वो जमीन में अच्छे से रह जाए, छोटे छोटे कुएं बनाए जाएं, और मैं कहता हूँ बरसात का जब पानी इकट्ठा होता है ना वो स्वच्छ होता है
0: जी,
1: वो इतना गंदा नहीं होता,
0: नहीं होता।
1: जब शुरू में पहला पानी निकल जाता है उसके बाद आप जमीन में स्टोर कर सकते हैं सर
0: जी।
1: और मेरे गांव में ऐसा मतलब कोई तालाब भी नहीं है जो बड़ा तालाब हो जिसमें हम स्टोर कर सके, तालाब है एक छोटा है लेकिन उस वो
0: इतना बड़ा इतना ज्यादा नहीं है।
1: हाँ, वो एक बारी भर जाता है और पूरे साल तो सूखता नहीं है सर।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि आप सरकार को इस विषय के एक्स्ट्रा अपने गांव में क्या किसी चीज की कमी है जो आप चाहते हैं सरकार को कहें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाए, अगर आपकी कोई ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत आए हैं, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके गांव में अगर किसी चीज की कमी है तो आप सरकार से क्या मांगना चाहेंगे?
1: सर, कमी तो मैं ये कहूंगा, एक तो हमारी जो मेन सड़क है ये ना तो मंडी बोर्ड के अंदर है और ना ही उसके पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, इन्होंने ये 7-8 किले की सड़क है वहां से अड्डे से लेके गांव के तक, जबकि ये सड़क 44 फुट चौड़ी है, दोनों महकमों ने अपने अंडर नहीं ले रखी।
0: अच्छा,
1: मैं पिछले 3 साल से लगातार कई बार जा चुका हूँ, दोनों जेआई एसडीओ से बात भी कर चुका हूँ, इसको एक तरफ तो लगाओ, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। और आपने देखो वो छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, ना ही हमें पंचायत को दिया जाता है भी, आप पंचायत खुद बना दे इसको
0: जी।
1: हम तो पंचायत की तरफ से भी इसको बनाने के लिए तैयार हैं अगर बन जाता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक तो ये टुकड़ा उसमें या तो पीडब्ल्यूडी को दिया जाए या फिर मार्केट बोर्ड को दिया जाए। और दूसरा जैसे पंचायती भूमि है अपनी यहाँ पे पड़ी है, उसमें शमशान घाट भी है उसी में पंचायत भूमि के साथ, सरकार से अपील करेंगे भी उसको जल्दी से निपटारा कराए और पंचायत के हक में लेके आए उसको, ताकि उसका जल्दी से साफ सफाई करा के बच्चों के लिए वहाँ ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था की जाए। और भी बहुत स्कीमें हैं
0: जो
1: सरकार की, वो सभी लागू की।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके गांव में खेल कूद का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
1: बस वही खेल कूद का ही काम नहीं है सर, अभी ग्राउंड की कमी है। अब ये छोटा सा स्कूल है, आपने देखो स्कूल में गया, उसमें इतना बड़ा ग्राउंड
0: नहीं है।
1: उसमें बच्चे छोटे बच्चे ही खेल पाते हैं, उसमें बड़े बच्चों के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। बड़े बच्चे दूसरे गाँव में जाते हैं, जैसे संभालखा हो गया, साहा हो गया, ऐसे
0: वहाँ जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे इस सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप अपने गांव वासियों और आसपास के जो लोग रहते हैं इस रेडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: सर मैं तो स्वच्छता के ऊपर ही संदेश देना चाहूंगा भी, सभी को अपने पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में और गाँव के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कबाड़ वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, जिससे बदबू वगैरह फैले, लोगों को दिक्कत हो। और स्वच्छ रहेंगे, गांव स्वच्छ रहेगा, देश भी स्वच्छ रहेगा सर।
0: तो एक जमाना था कि जब हम जो हम वॉशरूम घर में नहीं होता था तो हमारे पुरुष और महिलाएं बाहर जाते थे
1: जी, जाते।
0: वो चीज अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है?
1: बिल्कुल सर, अब पूरे मैं तो कहता हूँ मेरे गांव में क्या सर, आसपास के गांव सभी में बंद है अब तो।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सरपंच जी से हमने बात अभी की, राम निवास जी से। हमारे साथ है पीएचई डिपार्टमेंट अम्बाला छावनी से सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम आऊं गाऊं चले में।
1: धन्यवाद।
0: आज हमने यहाँ बात की है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। आप इस गांव में आते हैं तो आप इस गांव के बारे में और आपको कितना सहयोग इस गांव से मिलता है और आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है?
1: सर, मैं देखो 2012 से इस गांव में आ रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से, तकरीबन सभी गाँव वालों से बातचीत भी की है। हम यहाँ BWSC कमेटी की मीटिंग भी लेते हैं, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो शुरू से आ रहा हूँ, मतलब जैसे अम्बाला के गांव हैं तो सारे ही अच्छे गांव हैं। तो जैसे अम्बाला के मेरा ब्लॉक साहा है, तो ब्लॉक साहा में अकबरपुर गांव ये पड़ता है। एक तो सर ये छोटा सा गांव है, ठीक है, इसकी गांव की गलियां साफ सुथरी हैं। और शुरू में जब हम ने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो कुछ लोग थे कि हाँ, उनकी ओपन टैप चलती रहती थी, तो हमने मीटिंग्स करके डोर टू डोर सर्वे करके उनको समझाया। और आज आउटपुट निकल के आई है कि कोई भी जो व्यक्ति है पानी को वेस्ट नहीं करता
2: जी।
1: और गांव का हमारा आने का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जल संरक्षण करना
2: जी।
1: क्योंकि हमारे पास 1% से भी कम पानी हमारी धरती में रह गया है जीवन व्यापन करने के लिए। क्योंकि अगर हम 1% से भी कम पानी को नहीं संभाल सके तो हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी, हवा के बाद पानी ही ऐसा तत्व है कि जो जीवन के लिए जरूरी तत्व है। अगर हम पानी को ही ऐसे वेस्ट करते रहे तो हमारा जीवन संभव इस धरती पे नहीं।
0: और आगे की जो हमारी पीढ़ी आएगी उनको देने के लिए भी हमारे पास कुछ हाँ, नहीं होगा।
1: कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि हमने खुद भी अदर स्टेट में विजिट किया, हमने छोटी छोटी थैलियों में पानी को बिकते देखा है सर
2: जी।
1: तो हम नहीं चाहते कि हाँ, हमारे यहाँ अम्बाला में भी ऐसी स्थिति आए। हम लोगों को यही संदेश देते हैं, इसीलिए ही मोटिवेट करते हैं कि जितना जरूरत हो पानी को उतना लें, बाकी अपनी टैप को बंद कर दें। यहाँ तक कि सर जिनकी टैप टपकती भी है, हम उन लोगों को भी कहते हैं कि टपकता पानी एक तो ठीक नहीं रहता, और दूसरे तरीके से हम लोग जैसे सुपरस्टिशियस हो गए आजकल, तो हम कहते हैं कि अपने बाथरूम का पानी बंद कर लो, इससे आपके घर में बरकत नहीं रहेगी
2: जी, जी।
1: तो लोगों को उस तरह भी समझाते हैं।
0: मकसद यही है कि पानी को बचाना है और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल
1: करना है।
0: आप राज्य सरकार के इस समय प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार आपको कितनी मदद करती है, कितना सपोर्ट करता है, कितना प्रोत्साहन देता है कि आप गांव में, अलग अलग गांव में जाएं और फिर उस गांव के बारे में आप बात करें, लोगों को प्रेरित करें, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं?
1: सर देखो, हम गांव में जाते हैं, जो गांव में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम अपने अधिकारियों को बताते हैं और अधिकारी उस पर हेड ऑफिस मीटिंग में बताते हैं
2: जी।
1: तो सरकार का पूरा साथ रहता है इसमें, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स गांव में होती हैं तो सरकार उसको हमें ग्रीवेंस में डालते हैं उनकी, और पूरा साथ देती है गांव में कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जैसे लास्ट गांव मोड़ा में प्रॉब्लम आ गई थी सर
2: जी,
1: ठीक है, मोड़ा में चीफ इंजीनियर श्री राजीव बाती सी आए, तो उन्होंने अपना पूरा ऐसी साफ, संडे को भी सारा स्टाफ हमारा गांव में ही रहा जब तक समस्या ठीक नहीं हुई,
2: ठीक है।
1: तो वहाँ के इंसेनेटरी कनेक्शन वगैरह सब हमने सही तरीके से करवा के तब वहाँ पे स्वच्छ पानी पूरा पीने लगे लोग, और लोगों को समझाया जिनके इंसेनेटरी कनेक्शन थे कि भाई इनको आप ठीक कराओ, और डिपार्टमेंट ने और लोगों ने मिलकर आपस में दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, और तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि अकेला विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। अब सर हम गांव में जाते हैं, अगर हमें लोग नहीं जानते, लोगों को हम नहीं जानते, तो काम करना संभव नहीं होता।
0: यानी कि गांव के साथ आपका संपर्क बना है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो स्कूल हो चाहे सरपंच जी हो।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: आप अम्बाला के उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो की तरफ सुन रहे हैं, वो अपने गाँव को स्वच्छ करें, अपने पानी का प्रॉपर यूज करें, पर्सनल हाइजीन के बारे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: सर मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति अवेयर है, हर व्यक्ति जागरूक है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है RO का
2: जी,
1: ठीक है, अम्बाला में RO की जरूरत नहीं है सर। अम्बाला का जो TDS है वो 200 से 250 के बीच है,
0: यानी कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है,
1: बिल्कुल अच्छा पानी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अम्बाला का पानी है ना, नेचुरली पानी धरती से निकल रहा है, वो RO से भी बहुत बढ़िया पानी है। RO तो सभी मिनरल्स को खत्म कर देता है, और गांव के जो हमारे अम्बाला के निवासी हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भी जहां भी आप जाओ लोगों को यही संदेश दो कि भी पानी वेस्ट ना करें
2: जी,
1: क्योंकि अगर हम उनको छोटे बच्चे को यही संदेश देंगे कि पानी वेस्ट ना करें तो वो 10 लोगों को कहेगा तो छोटे बच्चे की बात को वो गौर से सुनेंगे कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कैसे बोली, कैसे किया।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: हमारे साथ पीएचई डिपार्टमेंट से रविंदर सर भी हैं। रविंदर जी से ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप समन्वय करते हैं गांव के लोगों के साथ, और साथ में आपका स्वागत भी करता हूं कार्यक्रम आओ गांव चले में, जो हम आज गांव अकबरपुर में आए हुए हैं।
4: नमस्कार सर, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम गाँव में जाते हैं लोगों को समझाते हैं कि जो हमारा पानी है वो 1.6% से भी कम रह गया, 1.6% से
0: जी।
4: तो गांव वालों को ये बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हमने कोई अपना समरसीबल लगवाया हो, नलका लगवाया है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है। जो हम पीएचईडी से पानी दे रहे हैं वो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल मतलब पीने का पानी
0: जी।
4: तो लोगों से ज्यादा हम आग्रह करेंगे कि वो पानी ना पिए। हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी हम जो भी चेकिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं आफ्टर मानसून, प्री मानसून, उसके सैंपल होते हैं, और इसके जो हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होता है महीने में एक बार होता है सर
0: जी। यानी कि लोगों के लिए जो पानी है वो स्वच्छ मिले, साफ सुथरा मिले
4: जी, जी सर,
0: ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए
4: जी सर।
0: तो क्या संदेश देना चाहेंगे सभी अंबाला वासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से?
4: सर यही बात कहेंगे कि आज अगर हम ये बात कहें कि दूध महंगा है या पानी महंगा है, तो हम यही कहेंगे कि पानी ज्यादा महंगा है
0: जी।
4: आज आप अगर मान के चलो कि जो एक बोतल है 20 रुपए की आ रही है सर, अगर 1000 लीटर की टंकी है हमें 20 रुपए के हिसाब से भरनी पड़ जाए सर,
0: और उसकी कीमत हाँ, हम आंक सकते हैं कितनी
4: जी सर, 20,000 रुपए का लीटर पानी हम हर रोज पी रहे हैं सर
0: जी।
4: तो यही आग्रह करूंगा मैं अपने अंबाला वासियों को कि पानी को जितना उपयोग हो सके उतना ही इस्तेमाल करें, और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को पानी दें और पानी को सुरक्षित रखें सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे से बात की और आपने हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।

0: गांव अकबरपुर से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में है ट्यूबवेल के ऑपरेटर रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ट्यूबवेल चलाते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं, क्या ख्याल रखते हैं आप उसका, और क्या टाइमिंग होती है जब आप अपने गांव वालों के लिए पानी का प्रवाह देते हैं?
1: सर जी, देखो सवेरे में 6 बजे से 9 बजे तक चलाता हूँ
0: जी।
1: बीच में भी कोई भी कोई फंक्शन हो, किसी का प्रोग्राम हो, वो बोल देते हैं अभी हमें 1 घंटा पानी दे दो, हम उनको वो भी दे देते हैं
0: जी।
1: फिर भी हम उनको ये बोलते हैं कि ये पानी पीने के लिए है, वेस्टिंग करने के लिए
0: जी जी।
1: तो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलाते हैं जी। 7 बजे तक चला के फिर भी कई लोग ऐसे हैं ऊंचे नीचे लाता, उसमें कहीं ऊपर नीचे पे, तो फिर भी किसी का फोन भी आ जाता है, फिर भी हम उसको 1 घंटा फिर भी फालतू दे देते।
0: आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोगों के लिए जब पानी वहां से छोड़ देते हैं तो क्या कभी ऐसा दिन रहा कि जब आप वहां ना जा पाए और लोगों को पानी ना मिला हो?
1: नहीं, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं है। जब कोई भी वैसे जी देखो आंधी तूफान आ गया,
0: नहीं वो ठीक है
1: हाँ जी, तो लाइट नहीं आई, वो तो देखो मजबूरी है जी,
0: जी।
1: उसमें तो कोई पानी नहीं पहुंचेगा, फिर भी हम मान लो बिजली वाले से रिक्वेस्ट करते हैं भी थोड़ी देर के लिए बिजली का इंतजाम कर दो, हमारे गांव में जो पानी है उसके लिए गांव प्यासा मर रहा, उस वास्ते पानी दे।
0: ये माना जाता है कि पानी पिलाना धर्म का कार्य है। जो आप ये कार्य आप कर रहे हैं तो आपको दिल की जो संतुष्टि है वो कितनी है?
1: उसको तो मेरी तो पूरी की पूरी 100%
0: संतुष्टि है।
1: हाँ जी, मैं तो अपने गांव वालों को ये बोलता हूँ भी देखो किसी गांव में कोई कैसी बंदा
0: जी,
1: मैं तो आपको जिस टाइम भी आप आधी रात बोलेंगे, आधी रात, दोपहर को, शाम को, जिस टाइम भी आप ये कहेंगे भी हमने पानी पीना है, हम पानी के लिए कैसे मर रहे हैं, हम उसी टाइम आपके पास पानी
0: छोड़ देंगे। ठीक है,
1: और गांव वालों को भी ये कहता हूँ, देखो जी मैं मौले घर घर भी जाता हूँ भी कोई पानी वेस्ट ना करे
0: जी,
1: उनको ये बोलता हूँ भी जैसे आप कपड़े धोते हैं, ये कपड़े धो के पानी ना मंदाओ, इसको जैसे आप घर में पोछा लगाते हैं
0: उसमें काम लगा, आपके कुछ गमले हैं
1: उनमें पानी डाल दो, पर जिस जैसे मान लो आप पानी की वेस्टिंग करेंगे तो आपनो एक दिन भी मान लो जैसे ट्यूबवेल ना चले तो आपनो उस चीज की कितनी दिक्कत आएगी
0: जी।
1: जब आप, मैं ये बोलता हूँ भी मान लो आप, मैं 1 घंटा चलाऊ तो 1 घंटे में सारे गाँव में पानी फिर, जब आप सही तरीके से यूज करेंगे
0: जी।
1: जब आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको पानी 4 घंटे चला लो जी तो भी
0: नहीं, तब भी नहीं पूरा होना
1: हाँ जी। तो लोग फिर भी वाले बहुत में हैं भी जो समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही कम पानी।
0: आप जहाँ पंप चलाते हैं वहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है?
1: इंतजाम तो बतेरे हैं जी, जैसे मान लो साफ सफाई भी है वहाँ पे, मान लो कोई जैसे जोड़ा कोई नंगा नहीं है, जैसे कोई गरीब है वो भी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं, सारी सुविधा जी वहाँ पे।
0: अंबाला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो ये कार्यक्रम रेडियो पे जब चलेगा तो पूरे अंबाला वासी कार्यक्रम को सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको भी यही कहना चाहूंगा भी एक तो माले अपने गांव-गांव में सब में जैसे मैं बोले अभी माले पानी भर लिया, कपड़े धो लिए, उसको घर में यूज करो, पोछा लगाने में, गमले में डाल लो, पानी की वेस्टिंग ना करो, पानी बहुत ही कीमती है। आज अपने गांव में माले वाटर लेवल 350 पर मोटर पहुंच रही है
0: जी,
1: जब आप इसको वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये तो थोड़ा बरसात होगी जी, इस करके इतना वाटर
0: पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया,
1: ये बरसात ना पड़ती तो वाटर लेवल बना सकेंगे।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस समय बात कर रहे हैं गांव अकबरपुर अंबाला से, और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के अंतर्गत, और मेरे साथ इस समय राज्य सरकार के PHE डिपार्टमेंट के पद अधिकारी भी साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जल ही जीवन है, अगर हमारे पास जल रहेगा तो ही हमारी जिंदगी सफल रहेगी और हम जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। और सरपंच जी, आपका और सभी का यहाँ पर गांव अकबरपुर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की, और लेता हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ गाँव चले, एपिसोड 13, जो आधारित था गाँव अकबरपुर अंबाला पर। पीएचई विभाग टीम के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जॉय मुखर्जी का जन्म झांसी में 24 फरवरी सन 1939 को हुआ था। अपनी पढ़ाई देहरादून में मुकम्मल की। अपना फिल्मी करियर सन 1960 में फिल्म लव इन शिमला से शुरू किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी साधना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉय मुखर्जी को रोमांटिक आइकॉन के तौर पे एक खूबसूरत पहचान मिली थी। फिल्म लव इन शिमला के बाद सन 1963 में फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ, सन 1964 में जिद्दी, सन 1966 में लव

सन 1967 में शागिर्द और एक मुसाफिर एक हसीना। उस वक्त की टॉप हीरोइनों में आशा बारिक, सागर बानो और साधना के साथ जॉय मुखर्जी को काम करने का बेहतरीन

0: बाबू छेला मैं बाबू छेला बाबू छेला।
1: जय मुखर्जी ने नीलम के साथ शादी की थी। मोनोजॉय और सुजॉय जय मुखर्जी के दो बेटे हैं और जॉय मुखर्जी की एक बेटी।

0: के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत
1: जॉय मुखर्जी की होम प्रोडक्शन में फिल्म हमसाया और एक

राजेश खन्ना और जय मुखर्जी दोनों दोस्त थे। राजेश खन्ना ने फिल्म इंसाफ मैं करूंगा में जय मुखर्जी को विलन का रोल ऑफर किया। फिर क्या था, जय मुखर्जी ने ये रोल

0: तो मालूम नहीं है,
1: हमसे सुनो।
2: फिल्म लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, आओ प्यार करें, जी चाहता है, इशारा जिद्दी, दूर की आवाज, बहु बेटी, लव इन टोक्यो, ये जिंदगी कितनी हसी है, साज और आवाज, शागिर्द, एक कली मुस्काई, हमसाया दिल और मोहब्बत, दुपट्टा आग और दाग, एहसान, इंस्पेक्टर, मुजरिम, पुरस्कार, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हरिवान, छेला बाबू, फूलन देवी, इंसाफ मैं करूंगा, लव इन बॉम्बे, ये कामयाब फिल्में साबित हुई जिसमें जॉय मुखर्जी ने बेहतरीन अदाकारी के जलवे अपने चाहने वालों तक पहुंचाए। तुम

जॉय मुखर्जी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत एक्टर माने जाते रहे हैं। 6'2" उनका कद था, गोरा रंग, और उनकी अदाकारी लाजवाब बेमिसाल साबित हुई।

73 साल की उम्र में 9 मार्च सन 2012 जॉय मुखर्जी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कहा। जॉय मुखर्जी एक खास बीमारी में मुब्तला

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास है 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरनी और लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक नया अंक, जिसका टॉपिक है सोच नहीं रह नहीं। एक ऐसा शो जो नए विचारों, नए नजरियों और नए सपनों की बात करेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी सोच बदल सकता है, जिंदगी देखने का नजरिया। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो सफलता की राह भी नई बन सकती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ही हालात में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? ये सिर्फ उनकी सोच का फर्क है। कई बार हम किसी हालात को समस्या समझकर उदास हो जाते हैं, जबकि वही हालात किसी दूसरे के लिए एक नया मौका होता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक गिलास आधा भरा है, कोई कहेगा ये तो आधा खाली है और कोई कहेगा ये आधा भरा है। फर्क सिर्फ नजरिए से देखें का है। अगर हम हर छोटी बात को पॉजिटिव नजरिए से देखें तो हमारे जीवन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। हर नेगेटिव बात में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढने की आदत डालें। अपनी सोच पर कंट्रोल रखना सीखें। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर एनर्जी वेस्ट ना करें। रोज सुबह ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत डालें। ये आपकी सोच और मूड दोनों इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप है अपनी सोच का एंगल बदलिए, ताकि जिंदगी का सफर और सुकून भरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में बदलाव कैसे लाए? नया नजरिया बनाना एक शुरुआत है, लेकिन उस नजरिए को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना सबसे जरूरी है। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। अपनी डेली रूटीन में एक छोटी सी नई आदत शामिल करें। जैसे अगर आप फिटनेस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। अपने गोल्स को लिखें और हर रोज एक छोटा स्टेप उस गोल की तरफ उठाएं। नेगेटिविटी से दूर रहने की आदत डालें, बी ए टॉक्सिक लोग या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। उदाहरण के तौर पर एक स्टूडेंट जो कहता है मुझसे मैथ्स नहीं होता, अगर वो अपनी सोच बदल दे और कहे मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगा, तो वही स्टूडेंट मैथ्स का एक्सपर्ट बन सकता है। बस ये स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। दोस्तों याद रखें, छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत लोग कहते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए। सीधा खड़ा होना, आई कांटेक्ट बनाना और क्लियर बोलना, ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। अगर आप हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिव बातें सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा ही नहीं। रोज खुद से कहे मैं कैपेबल हूँ। अपनी छोटी छोटी सफलताएं याद रखें। हर जीत छोटी हो या बड़ी, उसको सेलिब्रेट करें। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स भी पहली बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस थे? फर्क सिर्फ ये है, उन्होंने प्रैक्टिस की और अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। तो अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को एक स्किल की तरह ट्रीट करें और उस पर डेली काम करें। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक नया नजरिया जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमने सीखा कि अगर हम हर छोटी चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें, एक्शन लें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो हम अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो इस बात को याद रखना, हर दिन एक नई सोच लेकर आइए, नए कदम उठाएं और अपनी कहानी खुद लिखें। मैं हूं किरनी और आपसे विदा लेती हूं इस एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सोच और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए सोच नहीं रह नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ದೈಚು ಗೋಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है। इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, कुंभई ब्रह्मांडस सुंगरे, अक्सुई मंथर सतस करे, अक्सुई मंथर सतस करे, तस्सास मंथर क्या करे। लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में। नाभि हमारे सात कुंडलिनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में। हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है तस्सास मंथर क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि वो इस ललवाक को अपने सरस्वती के मुखमंडल से हम सब तक पहुंचे।

हम हैं यहाँ मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर ये राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: एक एहसास है। मोहब्बत एक एहसास है, खुशबू की तरह, सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। इन बुझी हुई महफिलों में शायद ये रौनकें यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे,
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

रहती पास पास, होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती, दीवाने पन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

मुस्कुराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि यह गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म, अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए, एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीपाली मल्होत्रा जी, प्रस्तुत करेंगे श्री भारत सपोरी।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं आज का कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और हर साल एक खास थीम को एक्सेप्ट और फॉलो किया जाता है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं एक महिला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, कई MNCs में काम करने का अनुभव भी अर्जित किया है। आइए आपको मिलाते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से इस खास दिवस पर। आपका स्वागत अभिनंदन दीपाली मल्होत्रा जी।
1: नमस्कार सपूरी जी, अंबाला की ऑडियंस को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे आज सबसे बात करने का। मैं पिछले 15 साल से IT सेक्टर में काम कर रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आपसे, हमने आज बहुत सारे प्रश्न करने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आज हम इस कार्यक्रम में एक दिशा दे पाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व दिया गया है और कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज की नारी जो कंधे से कंधा मिला के काम करती है और अपना वजूद भी बना रही है, आप इसको कैसे देखते हैं?
1: भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा, जैसे आपने बोला, नारी को देवी की जगह दी गई है। बट जैसे जैसे साल गुजरते गए, मुझे लगता है वो नारी की जगह उसको वहां पे एक पेडेस्टल पे, जिसे हम कहते हैं, एक बड़े ओहदे पे बिठा के एक कोने में कर दी गई। और इसी तरह औरतें अंदर ज़्यादा रहने लग गईं, उनको कई कामों में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बाहर के कई क्षेत्रों में उनको काम नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे अब दुनिया आगे बढ़ रही है, शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, वैसे वैसे मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, हर जगह उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो दुनिया एक अच्छी तरफ जा रही है और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि ये मौके हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं।
0: और मैं भी आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं जो भी कार्य करती हैं आज किसी भी स्तर पर, और वो अपने आप को अच्छे से साबित भी कर रही हैं, यानी जो हमारा समाज है इसमें आने वाले दिनों में हमारी बराबरी होनी बहुत ज़रूरी है। जबकि अभी बराबरी नहीं है, पर हम उस पथ पर चल पड़े हैं और अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आपने कई MNCs में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, क्या आपके अनुभव हैं? हम जानना चाहेंगे और हमारी श्रोता भी। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप वुमन पावर को कैसे देखते हैं और कैसे आप उनको प्रेरित करेंगे?
1: मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, इसने मुझे बहुत बहुत मेरा, जिसे कहते हैं, आउटलुक, इसको ज़्यादा ब्रॉड किया है, आप कह सकते हैं। सो मैं अंबाला से ही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पे स्कूलिंग हुई, यहीं पे इंजीनियरिंग हुई, बट इसके बाद जो मुझे मौका दिया इन कंपनीज ने अलग अलग शहरों में इंडिया के रहने का और अलग अलग देशों में ट्रैवल करने का, उससे मुझे लगता है मुझे बहुत कल्चर्स का पता चला और एक, जिसे कहते हैं, नज़रिया बहुत ब्रॉड हो गया। इन कंपनीज में और भी जो महिलाएं काम कर रही हैं, अंबाला के बहुत लोग हैं जिनकी बेटियां, बहुएं आजकल बाहर काम कर रही हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ नौकरी करने की नहीं मगर नेतृत्व वाले रोल्स, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप रोल्स, लेने की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही हैं महिलाएं, एक करियर बना रही हैं, और दोनों बातों में फ़र्क है। जो आपको पसंद है आप उसमें आगे बढ़ते हैं। आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाके वाला जो चीज़ है वो आज आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलता है। हमारे लीडर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, विमेन के लिए मौके दे रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल, कई महिलाएं उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है जब बच्चा हो जाता है 1-2 साल का, क्योंकि बच्चा देखने के लिए उनके पास हेल्प नहीं होती है कई बार घर पे। ऐसी महिलाओं के लिए रिटर्निंग मदर्स प्रोग्राम तक शुरू हो रहे हैं कई कंपनीज में, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रहे हैं। उससे क्या है, इन औरतों को जिन्होंने करियर ब्रेक ले लिया है 1 साल का 2 साल का 3 साल का, वो वापस दोबारा आ जाती हैं और उनको फिर से थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वो अपने आप को पीछे ना समझे बाकियों से। ये जो 3 साल का उनका गैप पड़ा है किसी महिला का, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके वापस शामिल कर लिया जाता है मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं महिलाओं के लिए आजकल प्राइवेट सेक्टर में।
0: ये इसलिए भी हो सकता है कि जो कार्य वो कर रही होती हैं जब वो लीव पर जाती हैं, ताकि जब वो वापस आ जाएं तो वो और ज्यादा तरीके से उस काम को अंजाम दें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपसे, एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है, क्या निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में महिलाओं के लिए यह एक रोमांचक समय है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि बहुत रोमांचक समय है। पहले एक विचारधारा होती थी जब हम बड़े हो रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना शायद महिलाओं के लिए मुश्किल है, जो घंटे लगाने पड़ते हैं वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अच्छी सरकारी नौकरी है, बैंक की नौकरी है, या एक स्त्री शिक्षक क्यों नहीं बन जाती, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में टीचर बन जाओ। मेरे अपने पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, सो मैं किसी के यहाँ वो नहीं कर रही हूँ कि टीचर होना अच्छी बात नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब है, एक थोड़ा सा हमें, जब मैं भी बड़ी हो रही थी, आइडिया दिया जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना कॉर्पोरेट सेक्टर में मुश्किल है, तो वो आज नहीं रहा। आज मुझे लगता है आजकल की लड़कियां महिलाएं, उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं और वो कर रही हैं। पहले होता था कि कई जगह जहाँ ट्रैवल रिलेटेड काम होता था, वो हम कहते थे सिर्फ पुरुष करेंगे, औरतें थोड़ी ट्रैवल कर सकती हैं, ऑड आवर्स का काम, नाइट शिफ्ट्स हैं, लड़कियां थोड़ी कर सकती हैं। मगर पिछले अगर आप देखिए 10 से 15 साल में असली चेंज आया है हमारे ये वर्क प्लेस पे, जहाँ महिलाएं नाइट शिफ्ट्स भी कर रही हैं, महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं। मैं खुद कई देशों में ट्रैवल करके आई हूँ, काम करके आई हूँ, और अलग अलग शहरों में जाके यंग लड़कियां जाके जॉब्स ले रही हैं और काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत रोमांचक टाइम है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने का, और कॉरपोरेट सेक्टर की भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में भी काफ़ी इस चीज़ में जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और हम लोग देखते रहते कि कैसे सपोर्ट किया जाए उन औरतों को जो अलग अलग जिनको ज़रूरतें हैं, ताकि वो काम करती रहें और काम में आगे बढ़ती
0: मेरे मन में यही प्रश्न बन रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि जब एक महिला या एक युवती नाइट शिफ्ट भी करती है, तो क्या उनके जो एम्प्लॉयर हैं, क्या वो इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि जब वो रात के 12 बजे या 1 बजे शिफ्ट खत्म करें, क्या उनको घर तक कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती है ताकि वो सेफ घर पहुंच सकें और अगले दिन फिर काम पे आ सकें, या क्या उनके उस कार्यालय में रात भर रहने के लिए क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आईटी सेक्टर में हूँ, यूजुअली आप जोड़ते हैं इस टाइप का नाइट का काम कॉल सेंटर से,
0: ठीक है,
1: मन में ये धारणा होती है, मगर इवन आईटी में हमारे कई प्रोजेक्ट्स रात तक चलते हैं। मैं खुद घर सुबह के 3 बजे भी आई हुई हूँ, 1 बजे भी आई हुई हूँ। हमारी जो कंपनी थी उस टाइम इन्फोसिस, वो हमें कैब देती थी, उसमें गार्ड साथ में बैठता था, जिस और हमें घर के डोर पे ड्रॉप किया जाता था। जब तक हम गेट के अंदर ना चले जाएं, वो गाड़ी भी रोक के रखते थे कि गाड़ी से उतरने तक, गेट के अंदर जाने तक, और फिर वो आ जाते थे। और इस सब की पूरी एंट्रीज होती थी कि ये एम्प्लॉई आज रात को लेट जा रही हैं। मेरी नाइट शिफ्ट नहीं थी, बट किसी दिन एक्स्ट्रा काम के लिए रुकना पड़ता था। सो इसी तरह और कंपनीज भी पूरा ध्यान रखती हैं। जब मैं एयर ट्रैवल करती थी TCS में, तो 8 बजे के बाद अगर मेरी फ्लाइट पहुंच रही है तो कंपनी कैब मुझे लेने आती थी, पुरुषों को नहीं, वो अपनी टैक्सी करते थे, बट मान लिया जाता था कि कंपनी से कैब आ रही है तो ज्यादा सेफ है, तो इसलिए औरतों के लिए 8 बजे के बाद। तो ये कुछ कुछ मुझे लगता है पॉलिसीज कंपनीज ने करी हुई हैं ताकि औरतें सेफ फील करें, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सके जैसे पुरुष करते हैं कंपनीज में।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये हमारे समाज के लिए एक आई ओपनर है और हमारी जो देश की युवतियां हैं या महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में जाके अपना कार्य कर सकती हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उनको इस वार्तालाप से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जो एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जहां हर किसी की रिस्पेक्ट हो और वैल्यू भी हो। आपने अपने कार्यकाल में 5 कॉन्टिनेंट्स में लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशंस की है, कैसे इस साल के थीम को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है?
1: जी हाँ, मैं बड़े सालों से इस तरफ काम कर रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें हम देखें कि कैसे हम महिलाओं का इंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन यानी सम्मिलित करना उन्हें हर काम में, उस पे हम ध्यान दे सके। इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बात है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी यही है, इंस्पायर इंक्लूजन, मतलब कि हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि महिलाओं को हम सम्मिलित करें, हम आर्थिक तरीके से उन्हें सम्मिलित करें, हम शिक्षा में उनको सम्मिलित करें, हम उनको उनकी सेहत रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, महिला रिलेटेड कोई सेहत के इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उसमें हम उन्हें वो मौका भी दें, तो कई तरह से उन्हें हम सम्मिलित करें
0: या एक ऐसा वातावरण दिया जा सके जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं
1: बिल्कुल कर सके। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसपे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी अभी आपको। हम औरतों को जॉब्स पे रख तो लेते हैं, मगर क्या जो मेन काम है जिनमें डिसीजन करना है बिजनेस के बढ़ावे का या कोई बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जॉब की देनी है, क्या हम अपने मन में ये सोचते हैं कि ये काम पुरुष को ही दिया जाए, ये लेडी पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। इस विचारधारा से आगे बढ़ के महिलाओं को हर काम में सम्मिलित करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि इस रेडियो प्रोग्राम में आपके यहाँ तो महिलाएं हैं, मुझे पता है जो काम करती हैं, मगर ऐसा सोच लीजिए कि आपको एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना है 90s के गीत और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होगा ये, और उसकी आप एक टीम बना रहे हैं, 3 लोग की टीम तो क्या आप सोचते हैं मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये और इसमें मैं ये मेरे पुरुष लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे, बट आप ये देखिए कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और आप वैसी टीम बनाएं। और एक और अच्छी बात ये है, अगर एक टीम में जैसे ये 3 लोग की टीम हमने बोली जो प्रोग्राम बनाएगी, इसमें पुरुष और महिला होंगे तो महिलाएं महिलाओं का जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव लेके आएंगी, पुरुष पुरुष की तरफ से पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, वो जो एक आपका पर्सपेक्टिव ही बढ़ गया, जो आज तक दुनिया चल रही थी क्योंकि ज्यादा पुरुष ही काम कर रहे थे उन्हीं का पर्सपेक्टिव चलता था, अब महिलाओं के हर काम में आने से ये चीज पे बहुत हमारे इन्फ्लुएंस हुआ है मैं कहूंगी, और इससे हर काम बेटर हो सकता है।
0: मुझे खुशी है इस बात की कि आपने एक ऐसा इशू जो है वो डिस्कस किया है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि FM 90.0 पर जितने भी विमेन सेंट्रिक कार्यक्रम हम बना रहे हैं या जो बना चुके हैं, उसमें एक कार्यक्रम है नारी एक दर्पण या और भी अन्य कार्यक्रम है, और वो हमारी जो स्टूडियो में महिलाएं हैं या युवती हैं वो ही उन प्रोग्राम्स को करती हैं, और वो क्योंकि वो उस दृष्टिकोण से शायद और अच्छे से समझ पाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और भारत सरकार की भी ऐसी नीति है कि जब भी कोई भी कार्यस्थल जो कि खास करके भारत सरकार के अधीन है, वहां पर जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं ज्यादा हों।
1: इस बात पे मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, बिकॉज आपकी शुरुआत और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं मैं कहूंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में संगीत कितना मायने रखता है।
1: संगीत मुझे लगता है बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि बचपन से हमारे घर में रफ़ी साहब के गाने, किशोर कुमार के गाने चला करते थे, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक है सुनने का। हम बड़े हुए तो हमने अपने युग के गाने सुने, इंग्लिश गाने भी सुने, पंजाबी भी सुने, हिंदी बॉलीवुड तो सुने ही सुने।
0: जी जी,
1: तो बिल्कुल बहुत तरह के सुनती हूँ।
0: मैं चाहता हूँ कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं, और अगर आप उस गीत को गुनगुना भी सकें तो श्रोताओं के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कौन सा गाना आप इस समय श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मैं एक मेरे बचपन का पसंद था मुझे गाना, वो सुनाना चाहूँगी। पुराना गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और क्यों पसंद था ये भी बताना चाहूँगी। इसमें माउथ ऑर्गन यूज हुआ है इस सॉन्ग में, और वो बड़ा यूनिक मुझे लगता था, बिकॉज और सॉन्ग से बिल्कुल अलग था ये गाना। इसलिए मेरी कुछ यादें हैं, मुझे उस टाइम बहुत पसंद था जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तो वही मैं आप ऑडियंस को आज सुनाना चाहूंगी। तो, एक लाइन सुना देती हूँ आपके कहने पे।
0: जी।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,

0: स्वागत आपका ब्रेक के बाद दीपाली जी। दीपाली जी आप मार्गदर्शक हैं सोसाइटी फॉर साइबर अवर सिक्योरिटी काउंसिल, कृपया विस्तार से बताएं हमारे श्रोताओं को और क्या ये सही दिशा है महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए।
1: जी हाँ सपोरी जी, पिछले 8 साल से मैं हैदराबाद में रह रही हूँ अपने पति और बच्चों के साथ। हैदराबाद में एक ये इनिशिएटिव है तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस स्पेसिफिकली, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसका नाम है सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल। इस सोसाइटी का काम है कि वॉलंटियर्स उठाना, पढ़े लिखे वॉलंटियर्स समाज में से। ये वॉलंटियर्स मेरे जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने तक। हमें बताया जाता है कई लॉस के बारे में जो कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं महिलाओं की हेल्प के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए, और हमें बताया जाता है कैसे गाइड करें, काउंसलिंग करें उन महिलाओं की जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, या डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या सेक्सुअल हरासमेंट मोलेस्टेशन के केसेस हैं, या फिर इवन साइबर फ्रॉड्स विमेन के साथ बहुत हुए हैं तेलंगाना में भी, इंडिया में भी। सो इस तरह की कई चीज़ें कवर करके 2 महीने हमें ट्रेन किया जाता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं सेशंस लेने, और हमारा काम ये है कि अगर समाज में कोई महिला है, उनके साथ ये हो रहा है बुरा, एकदम से वो पुलिस के पास नहीं जाती हैं,
0: ठीक है,
1: उन्हें किसी का सहारा चाहिए कि कोई उन्हें गाइड करे, सबसे पहले उनकी बात सुने और उन्हें गाइड करे। और पुलिस, वकील, इन सब से लोग डरते हैं शुरू में उनसे बात करने में। तो अगर हमें किसी केस का पता चलता है, जैसे मेरे पड़ोसी थे, उनकी कोई जानने वाली थी, डॉक्टर थी लेडी, उनका केस पता चला, उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया और मैंने उनकी पूरी बात सुनकर उन्हें आगे क्या कर सकते हैं अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। सो वहाँ ये जो सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल है, पुलिस के साथ मिलके भरोसा सेंटर है या काउंसलिंग सेंटर्स उन्होंने सेटअप किए हुए हैं, ताकि जिसके घर में प्रॉब्लम है उनकी फैमिलीज को बुला के काउंसलिंग की जाती है। पहले बहुत महीनों तक ट्राई किया जाता है कि जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें,
0: ठीक
1: है, ना कि तलाक करा दें
0: जी,
1: हस्बैंड वाइफ की अगर प्रॉब्लम है तो। सो सारे चाहते हैं कि अच्छा ही कुछ निकले पूरी बातचीत में से। अगर नहीं हो पाता तो फिर उन्हें वकील से कनेक्ट करते हैं, अगर बिल्कुल ही केस खराब है तो। सो इस तरह से उनकी हेल्प रहती है, और ये सब गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। सो महिलाओं को, और एकदम अगर उन पे कुछ अत्याचार करा जा रहा है घर पे, उन्हें घर छोड़ना है तो वो कहाँ जाएं? कई बार माँ बाप की सपोर्ट नहीं होती इन केसेस में, बहुत केसेस में मैं कहूंगी, ऐसे हमें पता चले हैं माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं शादी के बाद।
0: यानी कि जो ये वॉलंटियर्स है, ये एक तरीके से पुलिस के मार्गदर्शन में लोगों को सचेत करते हैं, उनको दिशा देते हैं, ताकि वो अपने हक के लिए भी बात कर सके और उसमें उन महिलाओं का उत्थान भी होगा, और खास करके उनके साथ जो जुड़े बच्चे भी हैं। तो क्या मैंने सही समझा?
1: बिल्कुल सही समझा। और जैसे मैंने कहा, कोई महिला को एकदम से घर छोड़ना है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया, उसे अपनी जान पे खतरा लग रहा है, बच्चे की जान पे खतरा लग रहा है, तो भरोसा सेंटर होगा वहां है बने हुए हैदराबाद में, वो वहां जाके रह सकती हैं कुछ दिन तक, जब तक कि अगला वो क्या करें वो सोचती हैं। सो मगर इन बातों का पता नहीं होता, या अगर आप न्यूज में भी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें नई जरूरत। मगर मार्गदर्शक जो अब फैले हुए हैं पूरे शहर में, वो समाज में ये बातों का बताते हैं लोगों को, जो पीड़ित महिलाएं हैं, और उनको हेल्प करते हैं। और इससे बहुत, एक आप मानेंगे नहीं कि कई महिलाएं जो आत्महत्या करने पे आ जाती हैं, उन्होंने बाद में बोला है कि हम आत्महत्या नहीं की क्योंकि उस टाइम किसी ने हमारी बात सुनी और हमें हेल्प किया। सो बहुत बहुत ये मुझे लगता है शक्ति देता है महिलाओं को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मुझे लगता है पूरे इंडिया में इस टाइप का प्रोग्राम पुलिस के साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए।
0: मैं आपको बधाई देता हूँ, और खास करके आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए आप सोशल वर्क भी करती हैं, और जो आपको विरासत में मिला है, जो आपके पिताजी डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी हमेशा लोगों के लिए रहते हैं, और वो उनके मदद के लिए सामने आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपने एक चीज और भी सिद्ध की कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने जो आपकी इंस्टीट्यूट है जहां आप काम करते हैं और उनका भी आप काम करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न मैं और करना चाहूंगा, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण क्या है?
1: जी हाँ, हम सोचते हैं सपूरी जी कि एक महिला ने नौकरी कर ली या अपना बिजनेस कर लिया तो ठीक है, उसने पैसे कमा लिए, बट ये जो हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं ये मुझे लगता है तभी आती है जब जो पैसा महिला कमा के ला रही है उसे क्या वो अपने हिसाब से खर्च पा रही है, फैसला उसका है या परिवार का है। अब मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की तरफ खर्चा कंट्रीब्यूट करने में, बच्चों के ऊपर खर्चने में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस खर्चों के बावजूद क्या औरत अपना डिसीजन ले पा रही है कि वो अपना पैसा पर्सनल सेविंग कहाँ करे, क्या वो सेव कर भी पा रही है अपने लिए या वो ज्वाइंट अकाउंट में सेव कर रही है। अभी भी हमें इंडिया में कई केसेस सुनने में आते हैं जिसमें औरत कमाती है और सारा पैसा आके पकड़ा देती है अपने हस्बैंड को, मोस्टली हस्बैंड को ही, और कोई बुरी बात नहीं है कि वो डिसाइड करे, आपको हेल्प करें डिसाइड करने में, मगर अगर आप पढ़े लिखे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करें। मुझे लगता है जब लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है उन्हें साथ में ये बताना भी चाहिए कि ये पैसे को आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। अब आपने कमा तो लिया, आपको सेव भी करना है, आपको अपनी टैक्स फाइल भी करना है, आपको ये भी सोचना है कितना खर्चना है कितना सेव करना है, ठीक है,
0: ताकि आने वाले दिनों की जरूरत भी पूरी हो सके।
1: बिल्कुल, और इसमें आप बिल्कुल आप सलाह मशवरा कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके करना है आप करिए, मगर डिसीजन औरत के अगर हाथ में है तो ही वो एम्पावर्ड है। मगर एक क्लॉज मैं ऐड कर दूं यहाँ, इसका ये मतलब मत लीजिए कि मैं अभी जाऊं और पैसे जो है कला मंदिर या जारा पे खर्च कराऊं। तो कई बार हम ये मतलब ले लेते हैं कि महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो सारा कपड़ों पे चला जाएगा। तो ठीक है, हर महिला को अपनी पसंद की चीजें खरीदने का अधिकार है, मगर यही विजडम है कि हम अपनी जितना भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं अगर वो महिला के हाथ में है तभी वो पूरी तरह एम्पावर्ड है।
0: यानी कि एक महिला आर्थिक तौर से सशक्त तब हो सकती है जब कोई भी फैसला लिया जाए उसमें उनका श्रेय होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और एक यहाँ पे मैं लाइन ऐड करूंगी, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि पुरुष उन्हें ये नहीं करने दे रहे इसलिए वो बिचारी महिलाएं नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी बात, और मैं कई कई जगह पे जब विमेन रिलेटेड बातें करती हूँ मैं हमेशा मानती हूँ कि पुरुष हमारे साथी होते हैं, और मुझे बहुत केसेस में लगता है कि गलत नहीं होते हैं वो, कई बार महिलाएं ही ये नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने बोला कि महिला अगर वो पढ़ी लिखी हैं क्या वो ये कर रही हैं, या हमेशा ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी पे डाल दी जाती हैं, अच्छा अपनी टैक्स फाइल करो मेरी भी कर देना। सो महिलाओं को ये खुद करना है, ये करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और वो भी महिलाओं को अपने लिए निकालनी है और तभी वो पूरी तरह से मुझे लगता है एम्पावर्ड हो सकती हैं।
0: मैं आपको एक इसी स्टूडियो का एक उदाहरण देता हूं, जब कभी मैं या टीम मेंबर यहाँ पे नहीं होते हैं तो जो हमारी संस्था है जो उसकी अध्यक्ष है वो मेरी धर्मपत्नी है, और मेरी एब्सेंस में या टीम की एब्सेंस में वो मॉर्निंग में उठ के ये सारे सिस्टम्स ऑन करके रेडियो को सही समय पर सुचारू रूप से शुरू करती हैं। तो हमें सिर्फ एक ये काम करना पड़ेगा, पुरुषों को भरोसा रखना पड़ेगा अपने परिवार पर, और परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं या किसी ऑफिस में अगर हम उन पर विश्वास रख सकेंगे तो वो भी उतना ही काम कर सकेंगे जितना हम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को और क्या निवारण है जब आप कार्यस्थल पर होते हैं। आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्टिवली एंगेज्ड हैं अवेयरनेस के लिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं महिलाओं को
0: जी,
1: मगर ये भी जरूरी है अगर एक महिला एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, मुझे लगता है आपको अपने काम के प्रति जैसे कहते हैं ट्रूथफुल हम कहते हैं, या बिल्कुल आपको भी दिखाना है कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम उस युग में से निकल रहे हैं जब हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं, सो बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक टाइम है जिसे हम बात कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ हर मोड़ पर एक महिला को फिर भी ये विश्वास दिलाए रखना है अपने ऑफिस में भी कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आप कई बार हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि हमें अपने आप काम मिलेगा, कुछ तो हम करेंगे, या कुछ बहुत अच्छा यू नो टीम वर्क होने लगा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है, तो आप मांगिए कि मुझे भी इसका हिस्सा बनाइए। एक तो ये बात है, कई बार हम लोग चुप होके पीछे बैठ जाते हैं तो उसमें भी हमें इंक्लूजन जो हम बात कर रहे थे सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर फिर भी आपको किसी टाइम पे ऐसा लगे कि आपके लिए कुछ सेफ नहीं है तो बोलिए, उसे करिए मत,
0: बात करिए,
1: बात करिए, आवाज उठाइए, और बहुत हद तक मैं कहूंगी वो बात का सोल्यूशन निकलेगा, आपको हेल्प की जाएगी। मगर आप चुप रह जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और आपके मन में भी ये होगा कि मैं ये करूं कि ना करूं, मैं लेट ट्रैवल करूं कि ना करूं, मैं मुझे ये अगर हेल्प करें तो मैं कर लूंगी, अगर कोई मुझे आश्वासन दे दे कि हाँ जैसे मैंने बताया कि कंपनी कैब आएगी तो मैं कर लूंगी ट्रैवल, सो वो सब आप बात करके खोलें, अपने से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए हेल्प आप मांगे,
0: और तभी उसका समाधान मिल पाएगा।
1: बिल्कुल। और तीसरा, जैसे एक एग्जांपल ही है, आजकल मेंस्ट्रुअल लीव की बात भी करी जा रही थी कि मैटरनिटी लीव तो होती है जब बच्चा हो तो माओ को, आजकल गवर्नमेंट का भी वो है पॉलिसी है कि आपको देनी ही देनी है 6 मंथ्स की लीव, तो बात ये थी कि मेंस्ट्रुअल लीव के टाइम हर महीने अगर कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर देने लग जाए तो प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है क्योंकि लोग कम हो जाएंगे काम करने के लिए, तो उस पे भी बात चल रही है और कई पहलू हैं, थोड़ा मुश्किल है इसको करना, अगर आप देखें आसान नहीं है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, मगर मुझे लगता है जहां चुनौती होती है वहां कुछ
0: रास्ते
1: तो निकलते ही हैं, तो वो रास्ता जरूर निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा शायद, और हम फिर शायद अगली टॉक शो में उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे।
0: बट मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार भी इस समय इन विषयों पर बहुत दिल से बात कर रही है, और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जहां इतनी सुविधाएं महिलाओं के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में है तो ये भी लागू हो सकता है, चाहे उसके दिन कम हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम एक बार फिर संगीत की तरफ जुड़ते हैं, और जैसे हमने अभी बात की थी कि आपकी जिंदगी में संगीत का एक बड़ा स्थान है, तो एक बार फिर हमारे पास गुंजाइश है कि हम आपसे एक और गाने की फरमाइश करें, और आप ये बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, या कोई और गजल हो या गीत हो, ताकि हम श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी हाँ सपूरी जी, गीत तो मैं सुनती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं पिछले कुछ सालों से गुरबानी से भी जुड़ी हुई हूँ और पाठ करती हूँ, शब्द सुनती हूँ, सो मैं चाहूंगी आप अपने ऑडियंस को आज सुनाएं मूल मंत्र जो कि है एक ओंकार सतनाम।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं दीपाली जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं।
1: मुझे मधुबनी आर्ट का शौक है। ये आर्ट फॉर्म बिहार साइड से है और ये तब की जाती थी श्री रामचंद्र और सीता जी के युग में, माना जाता है कि तब से शुरू हुई हुई है ये आर्ट फॉर्म। बड़ी बारीक पेन से या कलम से की जाती है। सो ये आर्ट फॉर्म का शौक है और इसी से मिलता जुलता एक मंडाला आर्ट होता है, वो भी मुझे शौक है करने का।
0: यानी आप कॉरपोरेट जगत में काम करने के साथ साथ आप महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भी काम करती हैं और साथ में आप एक आर्टिस्टिक नेचर की भी हैं और मधुबनी आर्ट आपको बहुत पसंद है। आप एक कामयाब प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक माँ भी है दो बच्चियों की, घर गृहस्थी और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे बनाती हैं आप? इस साल का वुमेन्स डे का थीम आप अपनी जिंदगी में कैसे देखते हैं?
1: बैलेंस की बात हम कई बार करते हैं, बैलेंस बिल्कुल काम में और हमारी पर्सनल लाइफ में, मगर मैं बता दूं सुपोरी जी, बैलेंस रोज 50-50 नहीं होता है। किसी दिन 90% काम होता है और 10% घर होता है और किसी दिन 80% घर और 20% काम पे भी चल जाता है। तो ये जो एक 50-50 मुझे लगता है, औरत कोई भी महिला अपने आप को इस प्रेशर में ना डाले क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ 50-50 पे कभी नहीं चलती है। मगर हाँ, जब आप देख सकें जिस भी समय आप जिस तरह से उसको बैलेंस करना चाहें, और हर घर की अलग कहानी होती है, मगर ज़रूर करें। और दूसरी बात, अपने लिए समय ज़रूर निकालें, चाहे आप कामकाजी महिला हैं चाहे आप घर पे रहने वाली महिला हैं, आप दोनों, हर महिला को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए जिसमें जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। उससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि जैसे ये मेरा टाइम है, मेरे फैमिली का नहीं है, बच्चों का नहीं है, हस्बैंड का नहीं है, काम का नहीं है,
0: वो एक्सक्लूसिवली आपका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आप करेंगे तो।
0: मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता, खास करके जो महिला श्रोता हैं, उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि आप जितना भी कार्य घर में करती हैं तो आप अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि क्या उच्च शिक्षित और पेशेवर कामकाजी महिलाएं घरेलू हिंसा से सुरक्षित हैं?
1: हम हमेशा सोचते हैं कि कोई महिला अगर पीड़ित है तो ऐसे घर में होगी जहाँ गरीब घर होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए इस तरह के काम करते होंगे
0: जी।
1: मगर जब से मैं मार्गदर्शक ग्रुप के साथ जुड़ी, हमें बड़े केसेस ऐसे बताए गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताए और मैंने भी जो केसेस हैंडल किए, वो बिल्कुल सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर महिलाओं के घरों में हुई हैं। वो डॉक्टर हैं, वो अकाउंटेंट हैं, वो खुद वकील हैं, मगर फिर भी वो पीड़ित हुई हैं किसी ना किसी वजह से। सो ये नहीं कह सकते, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये किसी भी इकोनॉमिक क्लास में हो सकती है, महिलाओं के अब्यूज जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज हो सकता है, जहां इवन उनके कमाए हुए पैसे भी उन्हें नहीं दिए जाते, बच्चों के लिए खर्चने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। सो ये हर इकोनॉमिक क्लास में हो रहा है। इनफैक्ट जितने ऊपर के आपके मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, वो और ज्यादा कम उसको पुलिस में रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो, उनको बहुत शर्म होती है कि अगर पुलिस केस बन गया सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाएगी। ना वो महिला रिपोर्ट करती है, ना फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं। तो कोई महिला ऐसा भी कह सकते हैं कि पढ़ाई या आपका जो डिग्री है वो ये नहीं श्योरिटी देगी कि आप सेफ हैं कि नहीं हैं, बट हाँ, अगर आप खुद जागरूक हैं, आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, सरकार आपको क्या राइट्स दे रही है, और आप अपना मन मजबूत करके अपने बच्चे की रक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माए हम देखते हैं ऐसे केसेस में, बच्चों की रक्षा करना जरूरी है, अपनी रक्षा करना जरूरी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कमा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ शिक्षा नहीं, शायद हमें ये जो मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं ये भी बच्चों को शुरू से देनी चाहिए।
0: यानी सकारात्मकता जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: आप आज महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी, अगर आप एक महिला हैं तो आप दूसरी महिला को सपोर्ट करें
0: जी,
1: गलत चीज में नहीं सही चीज में सपोर्ट करें
0: जी।
1: अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उनको उनका सहारा बने बनने के लिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आप भरोसा रखें कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं वो आपको हेल्प भी कर सकती हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और शायद आपका काम आसान कर सकती हैं बहुत जगहें। तो बस एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे पे भरोसा रखिए, यही मैं आज का मैसेज देना चाहूंगी
0: आपको। यहाँ अम्बाला कैंट के FM 90.0 स्टूडियो में आके कैसा लगा?
1: अम्बाला से मेरी जड़ें बिल्कुल पक्की जुड़ी हुई हैं, चाहे मैं और शहरों देशों में भी रही हूँ, तो मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा अपना अम्बाला का रेडियो स्टेशन है, और मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, ऑडियंस से बात करने का मौका दिया, तो मैं तो अपने आप को स्मॉल टाउन गर्ल ही मानती हूँ, यही हमें जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं बोला जाता है, तो बिल्कुल बड़े खुश हैं हम स्मॉल टाउन गर्ल होके, और आपको बहुत सारी मेरी तरफ से बधाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स, खास करके डॉक्टर VK मल्होत्रा जी, हमारे मार्गदर्शक भी है और साथ में हमारे सबसे बड़े श्रोता भी हैं, वो हमें फीडबैक भी देते रहते हैं कि इस काम को अगर ऐसे करें तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, और हमें खुशी है कि उसी परिवार से एक और सदस्य, रेडियो वितस्ता परिवार की सदस्य आज बनी है, और आपने आज बहुत सारी जानकारी दी महिलाओं के लिए, ताकि जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और उनको सचेत करें, उनको एक रास्ता दिखाएं, उनको एक दिशा दे पाएं। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए और अपने बात रखी, और खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए, और वो भी आज के खास दिवस पर जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद सपोरी जी, मुझे ये मौका देने के लिए आज बात करने का, और इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं, और सभी महिलाओं के साथ जुड़े पुरुषों को भी शुभकामनाएं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, और अम्बाला की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा गुड बाय।
0: दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान थे दीपाली मल्होत्रा जी, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ए बाबू ले लो ना नारी

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउण जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौण पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो दस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा उत्तम, हर साल नया बीज ही लाएं। बरानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश के बाद शुरू करें बिजाई। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई माह सबसे उत्तम समय है। बरानी इलाकों में मानसून की पहली वर्षा होने पर ही बिजाई करें, हर साल नया बीज ही लाएं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि खेत को दो या तीन बार जोतकर फौरन सुहागा लगाकर अच्छी तरह तैयार करें, ताकि घास फूस ना रहे। एक एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज चाहिए। खेत में सही उगाव के लिए बिजाई खुड्डों में इस तरह करें कि बीज के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी ना पड़े। खुड्डों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। अर्ध संचित क्षेत्रों के लिए HHB 299 और बारानी क्षेत्रों के लिए HHB 67 संशोधित को बुआई के लिए अनुमोदित किया गया है। यदि बीज पहले से उपचारित ना हो तो डाउनियो मेल्ड्यू या हरी बाली रोग की शुरुआती रोकथाम के लिए बीज को मेटलेक्सियल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर देना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। बिजाई के समय 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बरानी क्षेत्रों में तथा 24 किलोग्राम नाइट्रोजन व 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ संचित क्षेत्रों में अवश्य डालें। बाकी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को 2 बराबर भागों 18-18 किलोग्राम में बांटकर पहली बार पौधों की छटाई के बाद और दूसरी बार सिट्टे बालियां निकालते समय दें। बाजरा के सिंचित क्षेत्रों में इतनी ही नाइट्रोजन व फास्फोरस के साथ निम्न नीची भूमि में 12 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ डालें। बीजोपचार और रोग नियंत्रण। बीज को 3 या 4 बार धोएं, तैरते पदार्थों को बाहर निकालें। खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 50%, 400 ग्राम प्रति एकड़, 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के समय छिड़कें। यदि बिजाई के तुरंत बाद इट्राजीन का प्रयोग ना कर सकें, तो बिजाई से 10-15 दिनों के बीच में उतनी ही मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। बिजाई के 3 से 5 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है, जो खरपतवार नियंत्रण तो करती ही है, साथ ही नमी संरक्षण के लिए भी बहुत उचित उपाय है। वातावरण में ज्यादा नमी होने पर जोगिया रोग, डेन्यू मैथ्यू का संक्रमण हो सकता है, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रायोदार आवरण दिखाई देता है। संक्रमण की शुरुआत होते ही प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें अथवा अनुसंचित कवकनाशी का छिड़काव करें। चेपा या अर्गट रोग, इसमें बचाव हेतु बीज को 10% नमक से 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक में डुबो लें और तैरते हुए पिंडों व अन्य पदार्थों को बाहर निकालकर जला दें। नीचे बैठे हुए बीज को साफ पानी में 3 से 4 बार धोकर सुखा लें और 4 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीज के मिश्रण से बीजोपचार करके बिजाई करें। बारिश के मौसम में मधुमक्खी के बॉक्स में फंगस पनपने का खतरा, हवा का संचार रखें। बारिश के मौसम को देखते हुए जुलाई के महीने में मधुमक्खी पालन पूरी तरह से नमी से बचाव और समय पर बाहरी आहार देने पर टिका है। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का पालन करके ही एक कुशल पालक अपनी कॉलोनियों को बारिश की इन चुनौतियों से सुरक्षित रख सकता है। मधुमक्खी पालन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बदलते मौसम के अनुसार कॉलोनियों को कैसे संभाला जाए। कमल सैनी, जिला बागवानी उद्यान विकास अधिकारी करनाल ने बताया
कि इस दौरान अधिक नमी और फूलों के अभाव में मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। बारिश के दौरान बक्सों की समय समय पर सफाई करना बहुत जरूरी है। आधुनिक तरीका यह है कि यदि कोई कॉलोनी कमजोर हो रही है तो उसे स्वस्थ कॉलोनी के साथ मिला दिया जाए मर्जर, जिससे वह सुरक्षित रहे और किसान को अच्छा मुनाफा मिले। मधुमक्खियों को चीनी का आहार देना जरूरी। बारिश के मौसम में अत्यधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी के कारण बक्सों में फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जो पूरी कॉलोनी को कमजोर कर सकता है। उचित उगाई और स्टैंड। आधुनिक तकनीक के अनुसार बक्सों को जमीन से कम 6 से 9 इंच ऊंचे स्टैंड पर रखें। यदि बक्से सीधे जमीन पर होंगे तो बरसात का पानी और जमीन की नमी अंदर प्रवेश कर सकती है, जिससे छत्ता खराब हो सकता है। हवा का संचार वेंटिलेशन। नमी से बचने के लिए बक्सों के अंदर हवा का संचार अच्छा रखें। सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार में कोई रुकावट ना हो और बक्से के अंदर उमस ना बने। छत्ते का भंडारण खत्म ना होने दें। बारिश के कारण बाहर प्रकृति में फूलों का रस नेक्टर मिलना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती और छत्ते के अंदर का भंडार खत्म होने पर ही उनके भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाता है। नियमित अतिरिक्त मदद। मधुमक्खियों को जीवित रखने और कॉलोनी को सुरक्षित बचाने के लिए इस दौरान उन्हें चीनी का घोल, शुगर सिरप का बाहरी आहार देना बहुत जरूरी है। यह एक तरह से उनके लिए आपातकालीन भोजन है, जो उन्हें इस कठिन समय में जिंदा रखता है। बैंगन की फसल को फल बेधक कीट से बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें। विशेषज्ञों की सलाह पर हर 15 दिन बाद छिड़काव करें। बरसात के मौसम में बैंगन की फसल पर फल बेधक फ्रूट एंड शूट बोरर कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। करनाल के नीलोखेड़ी ब्लॉक के तखाना गांव में इसका प्रकोप देखने पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नियमित निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। हरियाणा में 10,720 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन की खेती होती है। वह जुलाई से अक्टूबर के बीच यह कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह पहले कोमल टहनियों में छेद कर उन्हें सुखा देता है, फिर फलों में घुसकर गूदा खाता है। इससे फल बाजार योग्य नहीं रहते। कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया, फूलों के आने से पहले प्रकोप दिखने पर 75 ग्राम पाइनोसैन 45 SSP को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाकर छिड़काव करें। जरूरत होने पर 15 दिन के बाद छिड़काव करें। बीज उत्पादन वाली फसल में प्रोक्लेम 5 SG का भी उपयोग किया जा सकता है। संक्रमित टहनियों और फल तोड़कर नष्ट करें। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए 1500 PPM नीम तेल का 4-5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव भी लाभकारी है। विशेषज्ञों ने जल निकासी, ड्रिप सिंचाई और संतुलित पोषण अपनाने की भी सलाह दी है।

ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में, तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: हे लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: ये हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनर्जी फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: तो चु बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। सहयोग राहुल अलियान का। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ दुनिया सिर्फ कान नहीं सुनते, दिल महसूस करते हैं। कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। और कुछ फनकार जैसे वक्त के उस मोड़ पर मिलते हैं जहां हर सुर एक कहानी बन जाती है। पेश है कार्यक्रम सरगम। आज के सरगम समर्पित है एक ऐसे ही संगीतकार को जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत में ताल का जादू बिखेरा, ओपी नायर। आए चलिए मेरे साथ एक ऐसे गीतों की दुनिया में जहां नायर साहब के सुर, गीतकारों के बोल और गायकों के जज्बात मिलकर बनाते हैं संगीत का एक रंगीन जादूगर सफर सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं CID फिल्म के गाने से, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, गायक रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, संगीत ओपी नायर।

अब पेश है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, संगीत ओपी नायर का और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

अपेश है ओपी नायर का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने, फिल्म सीआईडी से, और उसके गीतकार है जान निसार अख्तर।

उनके चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: पेश है रफी और आशा की आवाज में एक देसी रंग, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नायर। फिल्म का नाम है नया दौर।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, आपकी जिंदगी की रवानी। जारी है कार्यक्रम सरगम। लीजिए पेश है कश्मीर की कली का गाना, गायक रफी और आशा भोसले, संगीत दिया है ओपी नायर ने और इसके गीतकार है SH।

सभी श्रोताओं की नज़र SH बिहारी का लिखा गाना, जिसका संगीत दिया है OP नायर ने, गाया आशा भोसले और शमशाद बेगम ने, फिल्म किस्मत से।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना फिल्म मेरे सनम से, संगीत

अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म माया से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आज के सरगम में हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने एक ऐसे फनकार की जज्बात महसूस किए जो ताल से मोहब्बत करता था और धुन से रिश्ता निभाता था। इसके साथ ही सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सरगम के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सकें। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा।
1: वरना ये दुनिया जीन नहीं देगी, खान नहीं देगी, पीन नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

दोस्तों, फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका दोस्त रमेश मराठा। नमस्ते, वेलकम।

उस रोज तुम्हारी पहली बारिश में तुम्हारा पहली बार मेरे साथ भीगना धनक की तरह तुम्हारी चूड़ियां मौसमी खनक लिए अब की बारिश को सतरंगी लिबास पहना कर जमीन के इस टुकड़े को जन्नत में तब्दील कर देता है। मुझे तुम्हारी आंखों से काजल चुराने की फुर्सत कहां, फुर्सत कहां है मुझे तुम्हारी नींदों में शामिल होने की, क्योंकि बरसों से इसी इंतजार में हूं कि पहले ही की तरह बरसात हो और तुम्हारे नंगे पैरों को छूने की मेरी मुराद

कि मुसाफिर शायद कभी नहीं लौट के आते हैं, आती हैं तो सिर्फ उनकी मखमली यादें, वो यादें जो हमारे जज्बात को जिंदा और जावेदां रखने में हमारी मदद करते हैं। इन्हीं की बदौलत तो आज हर कोई यहां सुकून से जी रहा है। क्या हुआ, अपने इस भीड़ में खो जाते हैं, पर जाते जाते हमें इंतजार तो दे गए ना, और उस इंतजार के हर लम्हे में बस तेरा ही एक नाम हमारी यादों की दुनिया में शामिल है। शामिल हो तुम हमारी हर करवट में, जिंदगी की हर सिलवट में, उस मुसाफिर की तरह जो कभी न कभी कहीं न कहीं हमारी मुस्कानों में अपनी मुस्कुराहट शामिल

बिखरी हैं तस्वीरें, इस भीड़ में गुम हो जाते हैं चेहरे, वो चेहरे जिनकी एक झलक पाने के लिए मन हमेशा बेताब रहता है। और कई बार एक सवाल मन में हमेशा पैदा होता है कि यह गुमनाम चेहरे क्यों जन्म लेते हैं आखिर, अगर इनको मिलने की इजाजत नहीं होती। जरा सोचिए, अगर सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाए इन चेहरों की तलाश में, तो जीवन मृत्यु का ये ताना बाना कभी खत्म नहीं होगा, और ये चेहरे हमें रिझाने में नजर आएंगे, ओझल हो जाएंगे।

0: मेरी जन्नते बेनजीर, आसमां से उतर आई हो मुझे छूने के लिए। वो भी एक दौर था जब तुम मेरे अतीत के हर लम्हे में शामिल थे, मेरी धड़कनों की तरह। और एक यह भी दौर है जब अब तुम फना हो गए हो, गुम हो गए हो, चले गए हो उस पार, जहां मेहंदी भरे पांव में नाचते हो इतना कि तुम्हारे पैरों की धड़कन मेरे वजूद को ख्वाबों का लिबास पहनाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद तेरे मेरे सपने जरूर सच होंगे।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

खुशबू, इंतजार और तलाश, तुम्हारे साथ जिंदा रहने के लिए शायद जरूर।

जिंदगी का सफर है तवील और ये रास्ते हैं दुश्वार। यहां हर कोई अकेला है, तन्हा है, जीने के लिए दीवाना है। हम सब तलाशते हैं सुकून के कुछ पल और बेताब रहते हैं खुशी पाने के लिए। शायद यह भी अपनी जगह सही है कि हम सबकी मुस्कुराहटें आज बनावटें हैं और हालात के साथ समझौता करते हैं। क्या इसी तरह के हालात बादलों के उस पार भी होंगे जहां शायद अनदेखी बस्तियां हैं और भीड़ भरे बाजार, अलग तरह की रौनकें जो जिंदगी के सफर को सुहाना बनाने में

विक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज का यह सफर बस यहीं तक, चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत, नमस्ते।

जय श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 28 सेकेंड। श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। सूरज ढल चुका है और तारों की छाओं में अब समय आ गया है आज के इस सुहाने और यादगार सफर को एक खूबसूरत विराम लगाने का। दिन भर बातें के जो कारवां चले, जो सुर और नगमे आपकी चौखट तक हमने पहुंचाए, उन तमाम यादों को दिल में किसी कोने में सहजने की घड़ी अब आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम आज इस महफ

फिल का पर्दा गिराएं, आइए नजर डालते हैं आज की तारीख यानी 9 अगस्त 2026 के उन ऐतिहासिक और खास लम्हों पर जिन्होंने आज के दिन को इतना बेमिसाल बनाया। पहला, विश्व आदिवासी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। आज का दिन प्रकृति के सच्चे संरक्षकों, हमारे देव आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, उनकी अद्वितीय परंपराओं और उनके अधिकारों को नमन करने का दिन है। नागासाकी डे, 9 अगस्त 1945 का वो काला दिन हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है। आज का दिन पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा और इंसानियत का पैगाम देने का दिन है। क्विट इंडिया मोमेंट डे यानी अगस्त क्रांति दिवस। भारतीय भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वो ऐतिहासिक मोड़ जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज हम देश के उन महान परवानों को दिल से याद करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और साथ में मैं अपने श्रोताओं, अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज पूरे दिन मुझे जन्मदिन के पैगाम भेजे और उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऊर्जा मिलती है और आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बनाया, क्योंकि जब आशीर्वाद हो, जब बेस्ट विशेज हो, तो जिंदगी में कोई भी काम करना असंभव नहीं हो जाता है। आप सभी श्रोताओं का दिल से और अपने दोस्तों का फेसबुक और सोशल मीडिया पर जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी टीम रेडियो वितस्ता, जिसमें खास करके कृष्णा, अनु और जो इससे पहले हमारे पास अपने स्टूडियो में काम कर चुके हैं, नैना और जितने भी लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस और शुभकामनाएं भेजने के लिए। आइए अंत में आपके लिए हर दिन की तरह पंक्तियां लाया हूं। ये पंक्तियां आप सभी के नाम है और आज की पंक्तियां यूं है, वक्त की लहरों पे बहता हर एक हंसी का पैगाम रहे। वक्त की लहरों पर बहता हर एक हंसी का पैगाम रहे। दिलों में बसी है मोहब्बत, लबों पे शांति का नाम रहे। वितस्ता की पावन धाराओं से बहता रहे ये अपनों का प्यार। वितस्ता की पावन धाराओं से बहता रहे ये अपनों का प्यार। कल फिर सजेंगे सुरों के मेले, जब तक ढीले ये शाम रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थी पंक्तियां और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 10 अगस्त 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो ये है, सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा एपिसोड 6 आप सुनेंगे और कल हम रसोली की बात करेंगे, हमारे साथ होंगी डॉक्टर सुजाता संजय। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 6 हसियत बड़ी या दिल पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 पहलू और गीत कार्यक्रम एपिसोड 11 होगा, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 10 बजे होगा काव्य गोष्ठी एपिसोड 2, हमारे साथ होंगी डॉक्टर सुरेश कुमार वारियद। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 बजे सरगम एपिसोड 6 पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजें हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं हर दिन और जो मैंने आज पहुंचाई, उसको तैयार किया है टीम रेडियो वितस्ता के हमारे अन्नू ने। इन्हीं खास ख्यालों और यादों के साथ अब अपने दोस्त भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अपनी माटी की खुशबू और अपनी ही आवाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। अपना और अपनों का ख्याल रख लिए।
कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।